अपनी जान कैसे बचाओगे? देखो सबसे पहले तो घबराना नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम घबराओगे उतना ज्यादा डूब के जाओगे। अब ताकि तुम घबराओ नहीं, इसलिए एक बात बताता हूँ, हर दिन 650 से भी ज्यादा लोग डूबने की वजह से मर जाते हैं, तो घबराओ मत। अब अगर तुम गहरे पानी में हो तो अपने हाथ इस तरीके से आगे पीछे मूव करके और अपने पांव भी इस तरीके से आगे पीछे मूव करके पानी में सीधे खड़े रह सकते हो, ताकि हेल्प के लिए किसी को बुला सको। और इसी दौरान तुम्हें आराम आराम से सांसें लेनी है, ताकि तुम तैर पाओ। अब अगर तुम पूल में हो, मतलब गहराई कम है, तो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तुम्हें कुछ निकलना, बस शांति से चुपचाप पूल की जमीन तक चले जाना और जोर से उछल के ऊपर आना, फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाना। अब मुझे पता है तुम इनमें से एक भी चीज याद नहीं रखोगे, तो पहले से ही चुपचाप ट्यूब पहन के पानी में कूदना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी शायद। सोचो तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें